0: और मैं पाचू
1: इटीवनो और रेडियो पियम चुन के वेयर क्वारो
0: पियम चुन के वेयर क्वारो
1: बीमार मैं पाचू
0: बीमार मैं पाचू
2: यू आर लंग यू बी डू टेल आ नो का कम पेने
1: इटीवनो और रेडियो

0: मार मैं पाचो
1: इटी यूनियो और रेडियो यम ये करे वेर क्वारो
0: मार मैं पाचो
1: इटी यूनियो और रेडियो